0: मैं तुझे पसंद, तू मुझे पसंद, मैं को तू पसंद है, ते को मैं पसंद हूँ, कितना प्यारा संग है। ये तुसने खिदमत च लाया सा असन नाल जनाब उस्मान साहब हैं, वो आखने जी के राजा मुंशी साहब ने फरमाइश पूरी कर सो, जरूर जरूर जनाब क्यों नहीं, हुण ब्रेक अशनी ब्रेक तो बाद जरूर पूरी कर सा। और मियां अब्दुल रहमान साहब वेलकम टू द शो। एक भाई और पुछने टिक टाक ने उपर के तुसा दिहाड़ी टैक्सी करनी हो, बिल्कुल जी मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, कोई शक शुबा नहीं। और एक और यूजर है जनाब आने, माशाल्लाह जी वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मलक खालिद साहब तुसने भी फरमाइश पूरी की जासी जनाब, क्या याद रख सो राजा औरंगजेब साहब जनाब इटली तो साढ़े नाल मौजूद है, असा उन्होंने की अपने शो कश्मीर पठवार ने रंग च वेलकम आखने, ये बड़े बड़े प्यारे संगी है जनाब। इंग्लैंड असा बड़ा अरसा कट्ठे एक फैक्ट्री च काम किया, औरंगजेब साहब वेलकम, सत बिस्मिल्ला जी हैं। चूंकि हूँ गीत शीत ना लाने का इस मारे के ब्रेक ना टाइम बड़ा नज़दीक आ, ब्रेक ने उपर जुलसा मुड़ी वापस ऐसा तो फिर तुसा की सोने सोने प्यारे प्यारे मिठड़े मिठड़े गीत सुनासा। तुसा सुने रहे हो लिंक एफएम 96.7, तुसा ना मेजबान आबद हुसैन, तुसा से लाइव प्रोग्राम स्टूडियो चो पेश करी रहा अपनी मां बोली पठवाड़ी पहाड़ी ते मीरपुरी ने विच, इसे उम्मीद ने नाल के तुसा पसंद फरमासो। मेरे अबीबी वेलकम टू द शो, माड़ा ता तुसा ना साथ रहे सी 8 बजे तोड़ी, इस उम्मीद ने नाल के तुसा मेरा साथ सोने तरीके नाल निभासो। जी जी हुण जुल्लियां थोड़ी जी देर ब्रेक पर, तुसा भी कुछ चाह पानी पी के लो, ब्रेक तो बाद वापस ऐसा तो फिर तुसा की सोने सोने।
1: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
2: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
7: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
5: ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਈ ਗਏ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ। ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੇ ਤੱਕੋ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਸਾਲਗੀਰਾ, ਮਾਣੀਆਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬਣਵਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ, ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ। ਆਰਡਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ। ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07931737547
8: ਜਾਂ 07784850934।
9: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.

वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बारी फिर एक बारी फिर तुसमी जितने संगी साथी दे बेली हो तुसों की वेलकम टू द लिंक एफएम 96.7। तुसों ना मेजबान आबद हसन तुसों से प्रोग्राम पेश करी रिया कश्मीर ते पटवार ने रंग। इसी ब्रेक ने दौरान जनाब शफील नी माया नाज शख्सियत फखरे शफील शाने शफील कप्तान शफील दिलों पर राज करने वाली शख्सियत, जब हम जनाब नमरदार राजा गुलफराज खान साहब उन्होंने फोन किया सा मोहब्बत ना इजहार करी रहे से प्रोग्राम पसंद फरमाई रहे से। नमरदार गुलफराज साहब साड़ी जिंद साड़ी जान साढ़े माथे ना जुमर सर न ताज असा उन्हें कि एक बारी फिर वेलकम टू द लिंक एफएम 96.7 आने हैं। आहने जी बड़े अरसे तो बाद तुसानी आवाज सुनी ते पता ही लगना के स्वाद आई गया। थैंक यू वेरी मच नमरदार गुलफराज खान साहब। और नाले नाल जनाब उन्होंने बड़े प्यारे संगी बेली ता दोस्त चंद जमान मुगल साहब ने भी फोन खड़काया जनाब। अरे ये भी मुखबतों बखेरी रे प्रोग्राम पसंद फरमाई रे। ये भी नैदराज ने किंग है जनाब स्टेशन मास्टर। अरे नमरदार राजा गुलफराज खान साहब की तरफों जनाब चंद जमान मुगल साहब वास्ते ये गीत लासा। और भी जितने नमरदार राजा गुलफराज खान साहब ने संगी बेली ते दोस्त इसलिए सुनी रे तमाम टैक्सी ड्राइवर भरा रेस्टोरेंट वाले टेक वे वाले डिलीवरी ड्राइवर और भी जितने संगी बेली ते दोस्त सुनने उन सारे ने ना और जितने भी टिक टाक ने ऊपर मौजूद है और इसलिए प्रोग्राम सुनी रहे या फेसबुक पर उन्होंने नाम ही कर सा और स्पेशल जनाब खुरम साहब उन्होंने नाम ही कर सा। बड़ा प्यारा गीत आ ए सुन सो चन जी नमरदार जी आ रहे गीत जरा गड्डी खिलाई ओड़ो कुरे पासे नाल। और इस गीत ने बोल है जी कोई यार नहीं किसे दा ये दुनिया बड़ी बेवफाई है। क्या बात है जी जड़ा तुसों गीत पसंद किता कोई यार नहीं किसे दा। वाकया जी ये दुनिया बड़ी बेवफाई है, दुनिया बेवफाई न नाया इत्थे कोई भी किसे न नहीं सब मतलब प्रस्त जब मतलब निकली जाना था आखने जनाब बाय बाय। और इसने पर एक गीत भी आ लो जी सुनो और स्पेशल ब्रेड फाउंडेशन रेडियो ने पर जितने भी लिसनर इसलिए सुनी रहे उन्होंने नाम ही कर सा।

0: अरे बेटा,
1: मामा
0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जितने भी सुनने वाले हैं उनको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बताते चले कि ये प्रोग्राम है कवाली स्पेशल और आपका और मेरा साथ होता है रोज। सोमवार को छोड़ के बाकी दिन हमारा और आपका साथ रहता है और इसमें हम आपके लिए मुख्तलिफ कवाली पेश करते हैं। और अब ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

वेलकम बैक, खुश आमदेद। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, ये एक वाली स्पेशल और मैं हूँ फैसल याकूब सुल्तानी। और क्योंकि वक्त था ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है, स्टे ट्यून्ड। और ब्रेक के फौरन बाद अब चलते हैं हम अगले कलाम की तरफ। लीजिए जनाब, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस कलाम के बाद। और सभी कराम, आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त, काम की तैयारी कर रहे हैं या काम पे जा रहे हैं या काम से वापस आ रहे हैं, आपको एक बार फिर प्रोग्राम क्वाली स्पेशल में खुश आमदेद कहते हैं। ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और इसमें आपके लिए मुख्तलिफ जो है वो ट्रैक पेश करते हैं हम।

आप तमाम को खुश आमदेद कहते हैं एक बार फिर। प्रोग्राम है कवाली शो और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी, और खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कलाम आप सुन रहे हैं और अब चलते हैं अगले कलाम की तरफ।

है ओ विच तेरे टूंडे बार सुनू वांग मुर्गियां दे कूड़ा फरोल दाए भला बुझखा कौने विच तेरे शायद ओ होवे जिनू टोल दाए बुल्ले शाह नित

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: is Ling Ling FM.
1: तुम तो विक्की के गले ही पड़ती जा रही हो, दिखता तो तुम्हें है नहीं, क्यों अपनी तरह विक्की का भी फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली हुई हो?

क्यूट, हाउ क्यूट। वैसे विक्की, रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम उसके करीब जाओ। चलो यार, मैं जाऊँ।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: राह की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
4: Link FM.

0: This is Link FM.
1: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम।

0: मैं हूं अली अब्बास और आप सुन रहे हैं लिंक FM 96.7 FM.
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
1: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
2: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: Link FM, your number one community radio station.
1: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ। लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड, द वॉइस ऑफ द कम्युनिटीज, 96.7 लिंक एफएम,
2: लिंक एफएम।
3: You're listening to Link FM on 96.7 FM, linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश है। तेरी दहलीज पे छोड़ा है, उस मोहब्बत की तलाश है। झुकने की इबादत को तो समझे जहां वाले, कटने पे जो हासिल हो उस जन्नत की तलाश है।

0: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
1: This is Link FM.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.
2: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल।
0: जहां बातें बनते हैं, वही है Link FM. दिल से आपके साथ
3: Link FM Sheffield.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: तेरा तो लहंगा ही बड़ा सोहना पुत जमी परी लगी है मैं
18: चलो नी कुड़ियो डब्बे आ गए ने परिए जल्दी जल्दी मैं भी हेल्प कर दा
19: तू ना ना रे मुन्ने ते ना भरोसा ना करेगा
18: क्यों
19: एवे हुंदे लड़की जे
18: क्यों चंगा वाला ता हैगा ए ता एवे बोलदी रहंदी है तू एदे वल ध्यान ना दे है ना
19: तू इंज क्यों बोलिया कल मैं वेख्या सी उन्हें किसी कुड़ी नाल फोन ते लम्मी लम्मी गल्ला मार रहे मामू
17: हाँ जी रीज
19: आपकी शादी कब होगी
17: मेरी शादी अब बस तेरी मामी मान जे पुत्र
19: सानू की
17: चल चल तू जा अपनी मम्मी कोले मैं आया पुत्र तेरी मामी ने मार
19: के मामू की भी शादी होने वाली
17: है एक्सक्यूज मैडम सानू भी दे दो कोई काम
18: कम चाहिए
17: कम चाहिए
18: पानी पिला दो सारे
17: पानी

मोहब्बत हो गई है फिर से शायद, मैं फिर से चांद को पाने चला हूँ। बहुत रोया था जो एक बार करके, वही गलती मैं दोहराने चला हूँ।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: अजीब किस्सा देखा खुदकुशी का, दुनिया से तंग आकर एक आशिक ने मोहब्बत कर ली,

0: है नायाब वो है नायाब फोन अस नाउ ऑन शेफील्ड 315580 और विजिट नायाब्स online.co.uk
1: एक्सीडेंट हो गया रपा
2: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई किराए की गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है जेडे शेफील्ड दादरम गिरदोनवाले इलाकों में टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुम की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 03300571009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रादरम
3: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: This is Ahmad Hussein, and you're listening to Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahan.
5: My name is Rizwan Ishfaq.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba, and you are listening to Link FM.
9: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
10: Link FM.
9: Link FM, your number one community radio station.
11: जहाँ दिल मिलते हैं जहाँ बातें बनते हैं हर राह की मंजिल
12: जहाँ बातें बनते हैं वही है लिंक FM, दिल से आपके साथ
13: लिंक FM Sheffield.
14: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ
13: लिंक FM.

अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और हमारी यही नशात इस वक्त आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर भी सुन रहे हैं। सभी सुनने वालों को जो इस वक्त हमें चाहे ब्रेडफोर्ड में सुन रहे हों, चाहे शेफील्ड में, रादरम में सुन रहे हों, आप सभी को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद। उम्मीद करते हैं कि आप इस वक्त जहां कहीं भी हमें सुन रहे होंगे, आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तो सलामती दे, आप सभी शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशात सुनते रहें। सामिन, इस वक्त टिकटॉक पे भी हम आपके लिए ये लाइव नशात पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर में जहां भी इस वक्त आप हमें देख रहे होंगे, बफसले खुदा आप भी सभी खैरियत से होंगे। हमारी बहुत सी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं कि आप जहां रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो सुनते रहें। और सामिन, आज स्टूडियो इंजीनियर हैं हमारे साथ तो राब हैदर सैयद, जो कि हमारी तकनीकी मुआवनत कर रहे हैं। और साथियों, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहें, कॉल करना चाहें, तो कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677 ब्रेडफोर्ड, 01274306677 के रास्ते आप आज की इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं, तशरीफ ला सकते हैं। आप सभी को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद कहेंगे। और इस प्रोग्राम में कुछ गीत आपकी पसंद के होते हैं, कुछ हमारी पसंद के होते हैं, और मिलजुल के हम ये सफर तय करते हैं। 2 घंटों का ये सिलसिला रहता है। और सामिन, आप अगर इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपसे इल्तमास है कि आप डबल टैप कीजिए और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शिरकत फरमाइए। और आप शेर व शायरी भी सुना सकते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और जो इस प्रोग्राम का दूसरा घंटा होता है, उसमें हम आप सुनने वालों की जो टिकटॉक पे भी इवन कॉल्स होती हैं, आप हमें इस प्रोग्राम में आप शामिल होते हैं, आप सभी को भी हम साथ साथ शामिल करते हैं और लाइव ले जाते हैं। जी हाँ, हमारे किसी साहब ने हमें बताया है टिकटॉक पे कि शायद आवाज नहीं आ रही थी, तो अब बताइएगा, आवाज अब यकीनन बेहतर होगी। एक सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो ही कामयाब होगा आपको आवाज बहुत ही अच्छी आएगी। सैयद नदीम अब्बास साहब, खुश आमदेद, वेलकम जी आयनु। अब बताइएगा, अब आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही। जितने भी दीगर साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन, सभी को गोल्डन ओल्डीज, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। यस, आई कैन हियर यू, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। और मोहम्मद नईम, खुश आमदेद आपको भी कहते हैं। और दीगर जितने भी इस वक्त हमारे साथ टिकटॉक पे लाइव मौजूद हैं, आप सभी को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद। आइए अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत गीत से। और गीत है, आप सभी इस वक्त जो साथी हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक के जरिए, या आप हमें रेडियो पर सुन रहे हैं, आप सभी के लिए ये खूबसूरत गीत, अब आ भी जाके तेरा रास्ता तकते तकते, अब आ भी जाके तेरा रास्ता तकते तकते, मेरी आंखों में खटकने लगी बिनाई भी।

और जी हाँ सामिन, बताइएगा कि आपको ये गीत कैसा लगा, और आपसे यही इल्तमास है कि अगर आप हमें इस वक्त टिकटॉक पे लाइव देख रहे हैं, डबल टैप कीजिए, लाइव शेयर कीजिए, ताकि दीगर सुनने वाले भी हमें सुन सकें और आज के इस रंगे महफिल का हिस्सा बन सकें। जी हाँ सामिन, आप सुन रहे हैं इस वक्त रंगे महफिल आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से 1430 AM पर, और यही नशात आप सुन रहे हैं ऑनलाइन भी www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं। और बताइएगा इस वक्त आपको आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही है, हम आपकी फीडबैक का इंतजार कर रहे हैं। इस टिकटॉक वालों से मुखातिब हूँ, ऑनलाइन तो हमारी आवाज़ रेडियो पे भी सही जा रही है और जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है सभी पे सही जा रही है, लेकिन आप बताइएगा कि इस वक्त आप जो टिकटॉक पे हमें सुन रहे हैं, आपको आवाज़ हमारी आ रही है या नहीं आ रही।

जी हाँ सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। ठीक ठाक के सुनने वालों को शायद अब आवाज़ सही आ रही हो। हम एक सिस्टम चेक कर रहे हैं, जो ही वो ठीक होगा तो आपको बताएंगे कि क्या सिलसिला है। आइए एक और गीत आप सुनने वालों के लिए पेश करते हैं, और इस गीत के बाद हम चलेंगे ब्रेक पे।

और सामीने ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में खुशामदीद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1439 पर। 1439 के साथ साथ यही नशात आप डेप रेडियो पे भी सुन रहे हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं और फिर हमें आप CD क्वालिटी में क्रिस्टल क्लियर साउंड में सुन सकते हैं। और यही नशात इस वक्त आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर भी सुन रहे हैं। और अगर आज के इस प्रोग्राम में शिरकत करना चाहें, कॉल मिलाना चाहें, तो आप नंबर जानते हैं 01274306677 ब्रेडफोर्ड 01274306677। रंगरेज आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। और अभी हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी प्रेजेंटर जो कि हमारे साथ बहुत सफर उन्होंने किया इस रेडियो में और इनका नंबर उसके बाद हमसे खो गया था, आज तशरीफ लाए, दिली खुशी हुई। गोल्डन ओल्डीज के नाम से गालबन आप हैं सागर भाई, बेहद शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुनी बड़े अरसे बाद। तो वापस आइएगा, आपका अपना रेडियो है, आपकी अपनी महफिलें हैं, आइए और आप भी इसमें इस गुलदस्ते में अपना हिस्सा डालिए। यकीनन आपसे मुलाकात होगी जरूर। और बताइएगा आज कल कहाँ होते हैं, किस हाल में हैं, किस रंग में हैं, किस ढंग में हैं, क्या कुछ हो रहा है। चलिए अगला गीत आपके नाम भी करेंगे और दिगर जितने भी सुनने वाले इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप सभी के लिए मोहम्मद रफी की आवाज में एक सदाबहार गीत है। खत ऐसा लिखा है कि नगीने से लगे हैं वो हाथ के जिसने कभी जेवर नहीं देखा।

और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, आवाज थी मोहम्मद रफी की, शायरी थी नीरज की। बहुत शुक्रिया सागर साहब, आपने जो गीत सुनना चाहा वो भी आपके लिए हम जरूर पेश करेंगे। लेकिन अभी आप जानते ही हैं, आप हमारे साथ हैं, शायद टॉमी नाम है या टॉनी, उन्होंने कहा कि कुछ नए गीत भी हो जाएं, तो चलिए उनके लिए हम एक अच्छा सा नया गीत पेश करने जा रहे हैं, जिसमें सारी जो नई नई चीजें हैं वो सारी आ जाएंगी। उम्मीद करूंगा कि उन्हें वो गीत पसंद आएगा, और उसके बाद आपके लिए भी हम कोई और अच्छा सा गीत पेश करेंगे। चौधरी लतीफ साहब, खुश आमदीद आपको भी कहते हैं आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। अनीस अख्तर, जी हाँ, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और दिगर जितने भी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे आ चुके हैं, आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं हम। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। एके अली साहब, आप भी तशरीफ लाए, शायद हमने आप का नाम पहले नहीं देखा। और सामीन, आपसे यही इल्तमास है, जो इस वक्त हमें टिकटॉक लाइव पे देख रहे हैं, कि आप हमें डबल टैप कर सकते हैं, और इसके साथ आप हमारा लाइव लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और यूं करते हैं कि अब अटोनी, जो गीत आपने सुनना चाहा है उससे मिलता जुलता एक खूबसूरत गीत है, आपके नाम हम पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि गीत आपको पसंद आएगा, खूबसूरत गीत है। आज से मेरी सब खुशियां तेरी हो गईं।

और जी सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे, अरिजीत सिंह की आवाज में था खूबसूरत गीत था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी सुनने वालों को पसंद आया होगा। राजा सुभान, खुश आमदेद आपको। आंखें तेरी इतनी हसीं कि उनका आशिक मैं बन गया, देखता हूँ ढूंढता हूँ, अगर अभी मिल गया तो रंगरेज आपके लिए जरूर पेश करूंगा। इरफान हैदर, आप अभी तक स्टूडियो में नहीं आए, आपने तो ट्रेनिंग भी स्टार्ट की थी हमारे साथ, न जाने उसके बाद क्या हुआ कि आप गायब हो गए। आइए अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कीजिए ताकि आप हमारी इस टीम का हिस्सा बन सकें, आप भी अपने प्रोग्राम्स पेश कर सकें। और टिकटॉक के सुनने वालों से भी यही, देखने वालों से भी, व्यूअर्स से भी यही इल्तमास कि अगर आप भी रेडियो का जोर को शौक रखते हैं, वेस्ट यॉर्कशायर में कहीं भी रहते हैं, चाहे ब्रेडफोर्ड में हूँ, चाहे लीड्स में हूँ, हडर्सफील्ड में हूँ, कीतले में हूँ, ड्यूसबरी में हूँ, वेकफील्ड में हूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि फिर हम आपको भी ट्रेनिंग देंगे और आप भी फिर अच्छे से अच्छा खूबसूरत से खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे, जहाँ आज हम बैठे हैं, आप यहाँ बैठे होंगे और प्रोग्राम पेश कर रहे होंगे। आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। और साथियों, अब एक और खूबसूरत गीत है सतिंदर सरताज की आवाज़ में, उडारियाँ। उम्मीद करूंगा कि गीत आप सुनने वालों को पसंद आएगा। और कोई गीत सुना तो आप भी यहाँ लिख सकते हैं, आपके लिए हम गीत पेश करेंगे। और सामिन, ये प्रोग्राम इस वक्त आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 एफएम पर। स्टूडियो का फोन नंबर है 01274303677। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए आज की इस महफिल का हिस्सा बनना चाहें तो वो है 00447 800 599 563। आइए अब सतिंदर सरताज की आवाज़ में एक खूबसूरत गीत उडारियां आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि गीत आपको पसंद आएगा।

खूबसूरत गीत है और इसकी फरमाइश हमें हमारे एक साथी ने टिकटॉक पे की थी। चलिए गीत आपके लिए हम पेश करते हैं ताकि गीत आप उसका ज्यादा हिस्सा सुन सकें, क्योंकि उसके बाद आ जाएगी ब्रेक। तो चलिए आपकी पसंद हम आपके नाम कर रहे हैं।

0: name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30

0: से 5,000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है, ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
1: And the winner is
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
4: Sheffield's very own community radio station,
5: Link FM.
6: My name is Shireen.
7: My name is Abdul Rahman.
8: My name is Sai Mudassir.
9: This is Rahan.
10: My name is Rizwan Ishfaq.
11: My name is Asham.
12: My name is Azan Mudassir.
13: This is Ariba and you are listening to Link FM.
4: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
5: Link FM.

बेसबब बोलते रहना नहीं आदत मेरी, बेसबब बोलते रहना नहीं आदत मेरी, तुझसे मिलता हूं तो जाने मुझे क्या होता है। और सामीन प्रोग्राम रंगे महफिल के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके और आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। आप जहां कहीं भी इस वक्त हमारी ये नशात सुन रहे हैं, आप सभी को खुश आमदेद वेलकम जी आनो। और यूं करते हैं कि इस प्रोग्राम का आगाज हम एक खूबसूरत से गीत, एक पसंद हमें आई थी उससे करते हैं और फिर लाइव कॉल्स का सिलसिला हम टेलीफोन नंबर जो स्टूडियो का है उस पर भी वसूल करेंगे। आपकी कॉल्स वो है 01274306677, ब्रेडफुड 01274306677 है हमारा स्टूडियो का फ़ोन नंबर। अगर व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप शिरकत करना चाहें तो भी आप तशरीफ़ ला सकते हैं 00447-800-599-563। आइए, एक फरमाइश हमें मिली थी वो गीत हम पेश करते हैं और उसके बाद लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा। आप हमें ज्वाइन करेंगे और आप सभी को हम खुश आमदेद कहेंगे।

0: आ जाके अभी दर्द का मौसम नहीं गुजरा, आ जाके अभी दर्द का मौसम नहीं गुजरा, आ जाके अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है बस एक तेरी कमी है। और सामिन, रंग महफिल के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके और आप सभी सुनने वालों को खुश आमदेद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम जुल्फकार भाई, क्या हाल है? ठीक हैं आप? खैरियत से? और लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू है, जारी और सारी है, आपके लिए लाइन्स खोल दी गई हैं। और आप अगर स्टूडियो के नंबर पे कॉल करना चाहें 01274306677 के जरिए भी आप आ सकते हैं। और टिकटॉक की महफिल भी आपके लिए रवान दवा है, जारी और सारी है, और हमारा साथ दे रही हैं एएम के। और आप अगर तशरीफ़ लाना चाहें तो टिकटॉक पे ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो सर्च कीजिए, या अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप अगर लाइव शेर व शायरी सुनाना चाहें तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए, आपको हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आपको ज्वाइन करेंगे और आपसे शायरी भी सुनेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो को होस्ट है इस वक्त हमारे साथ एम के, उन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एम के।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, क्या हाल है एम के? आप खैरियत से ठीक है? आप
1: जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक।
0: आपको मिस किया, एक दो प्रोग्राम्स में आप नहीं आए और सुनने वाले आपका पूछ रहे थे, बहुत शुक्रिया आज आ पाई।
1: जी बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने याद रखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ।
0: जी
1: सो मच।
0: हमें जितने भी अहले ज़ौक सामीन हमारे होते हैं, व्यूअर्स होते हैं, उन सभी को हम हमेशा याद रखते हैं कि किसी ने शेर सुनाया था लेकिन शेर अच्छा था, तो हमें कभी वो भूलता नहीं है वो शायर और वो सुनने वाला। तो आपको भी खुश आमदेद करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आज क्या तोहफा लाई है, सबसे पहले आप सुनने वालों के लिए क्या सुनाएंगी?
1: जी मैं आपको एक गजल पढ़ के सुनाती हूँ, एक जी, मिनट।
0: जी जी जी जी इरशाद कीजिए, सुनाइए। जी जी आप, आपको आवाज आ रही है? हेलो एम के।
1: जी जी बिल्कुल।
0: जी जी आपकी शायद माइक म्यूट हो गई थी, क्या हुआ?
1: जी जी
0: जी जी जी जी सुनाइए, आप कुछ सुनाइए हमें।
1: जी
0: जी सुनाइए सुनाइए।
1: ये कुछ अशआर हैं, उसके बाद मैं आपको गजल सुनाऊंगी।
0: जी जी
1: मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ।
0: बहुत खूब।
1: मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: तेरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं।
0: क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
1: तेरे महफिल निगाहें मुझ पे जिन लोगों की पड़ती हैं, निगाहों की माफी से वो चेहरे
0: याद रखता हूँ। बहुत बहुत।
1: जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से।
0: जरा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से।
1: जरा सा हट के चलता हूँ जमाने की रिवायत से, जिन पर बोझ मैं डालूं वो
0: कम दे याद रखता हूँ। बहुत खूब बहुत खूब।
1: जी बहुत शुक्रिया। मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की।
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: मैं यूं तो भूल जाता हूँ खराशे तल्ख बातों की, मगर जो जख्म गहरे थे वो रवैये
0: याद रखता हूँ। बहुत खूब।
1: मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूँ, मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूँ।
0: और मुझे इससे एक बड़ा अलामती सा शेर है वो याद आया कि खामोशियों के लब पे कुछ गीत थे रवां, खामोशियों के लब पे कुछ गीत थे रवां, गहरी उदासियों के कमल झूमते रहे।
1: बहुत खूब जी बहुत खूब जी। ये गजल है, ये मैं पढ़ने लगी थी।
0: जी जी नाजी।
1: लिखते हैं, घबरा गया था काबाओ बुतखाना देख के।
0: घबरा गया था काबाओ बुतखाना देख के।
1: जी घबरा गया था काबाओ बुतखाना देख कर, जी खुश हुआ है रौनक के मैं खाना देख।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: साकी ने बज़्म खास में मुझको बुला लिया।
0: आहा।
1: साकी ने बज़्म खास में मुझको बुला लिया, सिर्फ मेरी लग्ज़िशे मस्ताना देख कर।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: सिर्फ एक मेरी लग्ज़िशे मस्ताना देख कर।
0: बहुत खूब।
1: मुड़ मुड़ के देखते थे मेरे हम सफर मुझे।
0: मुड़ मुड़ के देखते थे मुझे हम सफर मुझे। वाह वाह
1: जी। मुड़ मुड़ के देखते थे मेरे हम सफर मुझे, मैं रुक गया था राह में मैं खाना देख कर।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मुझे इससे एक शेर याद आया कि रुक रुक के देखते हैं वो अपना खिराम नाज, रुक रुक के देखते हैं वो अपना खिराम नाज, मुड़ मुड़ के देखते हैं कोई देखता ना हो।
1: वाह वाह जी कमाल। अब मैं तेरी निगाह का मतलब समझ गया,
0: अब मैं तेरी
1: अब
0: निगाह
1: मैं तेरी
0: का
1: निगाह का
0: मतलब
1: मतलब
0: समझ
1: समझ
0: गया।
1: गया, अब हाथ कांपता नहीं पैमाना देखकर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने।
1: बहुत शुक्रिया जी। नासे तेरा ख्याल बजा मशवरा दुरुस्त,
0: हाँ
1: नासे तेरा ख्याल बजा मशवरा दुरुस्त, कुछ सूझता नहीं दरे जाना ना
0: क्या
1: देखकर।
0: कहने, क्या कहने। फकीर शहर से मैं का जवाज क्या पूछें, फकीर शहर से मैं का जवाज क्या पूछें कि चांदनी को भी हजरत हराम कहते हैं।
1: हाय हाय बहुत
0: फैस
1: कुछ। कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ लोग रो दिए, कुछ लोग मुस्कुरा दिए, कुछ लोग रो दिए, मुझको शरीके महफिले रिंदा ना
0: बहुत
1: देखकर।
0: खूब, बहुत खूब। पहले तो
1: आजम
0: शेख साहब
1: की
0: ने देखा इधर उधर, पहले तो
1: जी
0: शेख
1: जी
0: साहब ने देखा इधर उधर, फिर सर झुका के सूए मैखाना चल दिए।
1: वाह जी। आजम हमारे हाथ से पैमाना गिर गया,
0: आहा, क्या कहने,
1: आजम हमारे हाथ से पैमाना
0: पैमाना गिर
1: गिर गया,
0: गया।
1: हर बुल हवस के हाथ में पैमाना
0: बहुत
1: देखकर।
0: खूब, बहुत खूब। हेलो ब्रेड
1: घबरा गया था
0: जी जी जी
1: काबा बुतखाना
0: आप
1: खाना
0: तो काफी आ
1: देखकर,
0: रही है अपनी,
1: जी
0: ठीक
1: खुश
0: है,
1: हुआ है रौनके मैखाना देखकर।
0: बहुत
1: बहुत
0: अच्छे,
1: शुक्रिया आपकी
0: बहुत
1: समाप्त
0: अच्छे,
1: का जी।
0: बहुत अच्छे, क्या कहने। बहुत ही खूबसूरत शेर आपने सुनाया। और जी हाँ, इस फोन की बैटरी भी अच्छी है और थोड़ा सा डिम हो गया, ना जाने क्या हुआ इसे। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शायरी आपने सुनाई है। और एके अली साहब उधर हमें कॉल कर रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर एके अली साहब इधर आना चाहें तो वो भी हमारी इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं टिकटॉक पे। और सामिन, आप से गुजारिश है कि आप अगर कॉल करना चाहें तो स्टूडियो के नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं, 01274300667। दावर, आप अगर आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, हमारी आज की इस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। जी, आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपकी रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप भी हमारे साथ शायरी की इस महफिल में हिस्सा ले सकेंगे। जी हाँ सामिन, आप इस वक्त सुन रहे हैं रंगे महफिल, पेशकश है आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की 1413 AM पे। जी, आप कुछ और भी सुनाएंगी।
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल।
0: जी
1: मैं
0: आप इनायत कीजिए,
1: जी
0: और उधर साथ
1: इसमें
0: टिक टाक
1: अनुच्छेद।
0: पे भी नजर रखिएगा, अगर उधर
1: हाँ
0: हमारे
1: जी
0: कोई
1: बिल्कुल
0: साथी
1: बिल्कुल
0: आते हैं तो।
1: बिल्कुल
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी एक कलाम है अमजद इस्लाम अमजद का, वो
0: जी जी
1: मैं पढ़ रही थी।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: कोई भी लम्हा कभी लौट कर नहीं आया,
0: कोई भी लम्हा कभी लौट कर नहीं आया,
1: कोई भी लम्हा कभी लौट कर नहीं आया, वो शख्स ऐसा गया फिर नजर
0: फिर
1: नहीं
0: नजर
1: आया।
0: नहीं आया। हमारे घर से वो जब हुए रुखसत, मेरे घर से जब वो हुए रुखसत, रोशनी घट गई सितारों की।
1: वफा के दश्त में रास्ता नहीं मिला कोई,
0: वफा के
1: वफा
0: दस्त
1: के
0: में
1: दश्त में
0: रास्ता
1: रास्ता नहीं
0: नहीं
1: मिला
0: मिला
1: कोई,
0: कोई।
1: सिवाय गर्द सफर हम सफर नहीं आया।
0: बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब।
1: जी
0: बब्बू राणा, आपने भी हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदेद कहते हैं आपको ब्रेडफोर्ड में। आपके लिए अल्लाह करे तो ये शेर मुबारक हो और आप इसी तरह यहाँ कवाली की महफिलें सजाते रहें। जी हाँ, आर्टिस्ट साथी हमारे लाहौर पाकिस्तान से बब्बू राणा, जो कि खबरनाक
1: माशाल्लाह
0: में भी
1: जी।
0: आते थे, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप जारी रखें अपनी शायरी। जी जी
1: पलट के आने लगे शाम के परिंदे भी,
0: पलट के आने लगे
1: पलट
0: शाम
1: के
0: के
1: आने लगे शाम के परिंदे
0: परिंदे
1: भी,
0: भी,
1: हमारा सुबह का भूला मगर
0: मगर
1: नहीं
0: नहीं आया।
1: आया।
0: फिर से पढ़िएगा, खूबसूरत शेर है, वाह वाह।
1: जी पलट के आने लगे शाम के परिंदे भी, पलट के आने लगे शाम के परिंदे भी, हमारा सुबह का भूला मगर नहीं आया।
0: और हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो, तुम परिंदे हो, चमन छोड़ के जा सकते हो।
1: बहुत खूब। किसी चिराग ने पूछी नहीं खबर मेरी,
0: किसी चिराग ने पूछी
1: किसी
0: नहीं
1: चिराग ने पूछी नहीं
0: खबर
1: खबर
0: मेरी,
1: मेरी, कोई भी फूल मेरे नाम
0: पर
1: पर नहीं
0: नहीं
1: आया।
0: आया। बहुत खूब, बहुत खूब।
1: चलो के कूच आए कातिल से हम ही हो आए,
0: चलो कि कुछ
1: चलो के
0: आए
1: कूच आए कातिल से
0: हम भी
1: हम ही
0: हो आए।
1: हो आए, के नखलेदार पे कब से समर नहीं आया।
0: बहुत
1: बहुत
0: खूब,
1: खूब।
0: बहुत खूब,
1: खुदा के खौफ से दिल जो लरजते रहते हैं,
0: वाह वाह।
1: खुदा के खौफ से दिल जो लरजते
0: लरजते रहते
1: रहते
0: हैं
1: हैं, उन्हें कभी
0: क्योंकि
1: भी जमाने से डर
0: डर
1: नहीं
0: नहीं
1: आया।
0: आया। कहते
1: बहुत
0: हैं ना कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता,
1: बाबा
0: हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता,
1: क्या
0: टूटे भी
1: कह
0: अगर
1: रहे,
0: तारा तो जमीन पर नहीं गिरता,
1: बहुत
0: गिरते हैं समंदर में बड़े शोक से दरिया, दरिया में कभी आके समंदर नहीं गिरता।
1: समंदर
0: और
1: नहीं
0: इस
1: गिरता।
0: बंदा नाचीज पे, इस बंदा नाचीज पे नबियों का है साया, जो भूख में भी लुकमाए तर पर नहीं गिरता।
1: क्या कह रहे हैं,
0: तुफाना
1: बहुत
0: ना
1: खूब,
0: चीज
1: वाह
0: सुनता। जी, इनायत
1: हाँ
0: कीजिए।
1: जी। किधर को जाते हैं रास्ते ये राज कैसे खुले, किधर
0: किधर को जाते
1: को
0: हैं रास्ते,
1: जाते हैं रास्ते ये राज कैसे खुले, जहां में कोई भी बारे दिगर नहीं
0: नहीं
1: आए।
0: आया।
1: क्या कह
0: और
1: रहे हैं,
0: मुझे शहजाद अहमद का वो शेर इससे याद आ जाता है कि बेवजह भटक जाने का इल्जाम अबस है, बेवजह भटक जाने का इल्जाम अबस है, जब रस्ते ही रस्ते हों तो इंसान किधर जाए।
1: क्या कह रहे हैं,
0: किधर
1: जाए। वाह जी, ये कैसी बात कही शाम के सितारे ने,
0: ये
1: बहुत खूब,
0: कैसी बात
1: कैसी
0: कही
1: बात कही
0: शाम
1: शाम
0: के
1: के सितारे
0: सितारे
1: ने,
0: ने,
1: कि
0: क्या कहते
1: चैन
0: हैं,
1: दिल को मेरे रात भर नहीं आया।
0: क्या कहने,
1: बहुत
0: क्या
1: खूब,
0: कहने।
1: क्या
0: कहते हैं ना
1: कह
0: कि
1: रहे हैं,
0: आज
1: वाह
0: की रात भी गुजरी है मेरी कल की तरह,
1: वाह,
0: आज
1: क्या कह रहे
0: की
1: हैं,
0: रात भी गुजरी है मेरी कल की तरह,
1: और
0: ना
1: क्या,
0: हाथ आए सितारे तेरे आंचल की तरह।
1: बहुत खूब,
0: वाह
1: क्या
0: जी,
1: कह रहे हैं,
0: कमाल
1: वाह वाह।
0: कमाल। जी,
1: हमें यकीन है अमजद, नहीं वो वादा खिलाफ,
0: हमें
1: क्या
0: यकीन
1: कह
0: है
1: रहे हैं,
0: अमजद, नहीं वो वादा खिलाफ।
1: क्या कह रहे हैं, हमें यकीन है अमजद, नहीं वो वादा खिलाफ, ये उम्र कैसे कटेगी अगर नहीं
0: क्या
1: आया।
0: कहने,
1: क्या कह रहे
0: क्या
1: हैं, क्या
0: कहने,
1: कह रहे हैं,
0: वादे के
1: कोई भी
0: साथ
1: लम्हा, हाँ जी,
0: वादे
1: कोई
0: के
1: भी
0: साथ
1: लम्हा कभी लौट कर नहीं
0: नहीं
1: आया,
0: आया,
1: वो शख्स ऐसा गया फिर
0: फिर
1: नजर नहीं
0: नहीं
1: आया।
0: आया।
1: बहुत
0: क्या कह रहे
1: शुक्रिया
0: हैं,
1: आपकी
0: कहते
1: समझने
0: हैं ना
1: की।
0: कि वादे के साथ शर्त ये अच्छी है आपकी,
1: बहुत खूब,
0: वादे के साथ शर्त ये अच्छी है आपकी,
1: वाह
0: वादा
1: वाह,
0: वफा करेंगे अगर याद रह गया।
1: बहुत खूब, माशाल्लाह जी,
0: जी,
1: क्या कह रहे
0: और
1: हैं,
0: मिर्जा बेग आपको भी खुश आमदेद कहते हैं, आपने कुछ शेर लिखा है,
1: खराब
0: जरा आप इनका शेर पढ़िएगा, मुझे सही समझ नहीं आ रही, आप देख सकती हैं तो इनका शेर पढ़िएगा।
1: मिक्स बाव समथिंग, कोई मिक्स को बाव में मत जाने दीजिए, नाखा खून किसी परवाने का होगा।
0: जी, हाँ, बड़ा क्लासिक शेर है, मुझे इस वक्त पूरा जहन में नहीं आ रहा, अच्छा शेर था ये।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: सही सही सही। और दिगर भी हमें अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहें तो सभी से कहते हैं कि डबल टैप कीजिए
1: खिलाओ,
0: और आज
1: हाँ
0: के इस
1: जी
0: प्रोग्राम का
1: बिल्कुल
0: हिस्सा बन सकते हैं, हमारा लाइव शेयर भी कीजिए। और दावर मेहर,
1: जी,
0: आपको इनवाइट किया था हमने, आप कहाँ चले गए, अगर आप इधर ही हैं तो आप रिक्वेस्ट भेजिए ताकि हम आपको लाइव ले सकें, हम चाहते हैं कि आप।
1: अभी आप
0: जी,
1: पोइट्री सुनिए या फिर आप कुछ मजीद
0: एक
1: लेखन।
0: आध हमारे पास अगर एक एक गजल आप और सुना दें, और अगर हमारे साथ इस
1: ओके
0: दौरान कोई
1: जी,
0: और आगे
1: बिल्कुल,
0: टिकटॉक पे, हम उन्हें भी लाइव ले लेंगे। जी, आप सुनाइए
1: ओके
0: कुछ
1: जी।
0: और,
1: जिन्हें कलाम है मोहसिन नकवी का,
0: क्या कहने उसने,
1: उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन,
0: क्या कहने,
1: उसने जब जब भी मुझे
0: दिल
1: दिल
0: से
1: से
0: पुकारा
1: पुकारा
0: मौसम,
1: मोहसिन,
0: क्या
1: मैंने तब
0: कहने।
1: तब ये बताया कि तुम्हारा मोहसिन।
0: बहुत खूब,
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब,
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, लोग सदियों की खताओं पे भी खुश बसते हैं,
0: आहा,
1: लोग
0: वाह
1: सदियों की खताओं पे भी खुश बसते हैं, हमको लम्हों की वफाओं ने उजाड़ा मौसम।
0: उजाला
1: क्या कह रहे
0: मौसम,
1: हैं, वो था जब पास तो जीने को भी दिल करता था,
0: क्या
1: वो
0: कह रहे हैं, वाह
1: था
0: वाह
1: जब पास तो जीने को भी दिल करता था, अब तो
0: वाह
1: पल भर
0: वाह,
1: भी नहीं होता है, गुजारा
0: गुजारा
1: कैसे।
0: मौसम,
1: क्या
0: वाह
1: कह
0: वाह,
1: रहे हैं,
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत
0: अब
1: खूब,
0: तो
1: बहुत
0: खूब,
1: खुद को भी सवारा नहीं जाता हमसे,
0: वाह
1: क्या कह रहे
0: वाह,
1: हैं, अब तो खुद को भी सवारा नहीं जाता हमसे, एक वो वक्त था कि तुझको भी सवारा मोहसिन।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, क्या कहने।
1: आग लग जाती है अपनों के दिलों में जिससे, आग लग जाती है अपनों के दिलों में जिससे, फिर वही बात क्यों करते हो दोबारा
0: दोबारा मोहसिन,
1: मुझसे,
0: क्या कहने। कहते हैं ना कि
1: रात जी,
0: वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है।
1: बहुत खूब जी,
0: जी
1: बहुत खूब, आग लग जाती है अपनों के दिलों में जिससे,
0: आग लग जाती
1: आग
0: है
1: लग जाती है अपनों
0: अपनों
1: के
0: के
1: दिलों
0: दिलों में
1: में
0: जिस,
1: जिससे, फिर वही बात करते हो क्यों दोबारा
0: दोबारा
1: मुझसे,
0: मोहसिन, बहुत खूब, बहुत खूब,
1: रात अंधेरे में मेरे घर को जलाया किसने,
0: आहा,
1: रात अंधेरे में मेरे घर को जलाया किसने, मुझको ये काम भी लगता है तुम्हारा मुझसे।
0: मोहसिन, बहुत खूब,
1: जब हो गया यकीन वो नहीं आने वाला, जब हो गया यकीन वो नहीं आने वाला, गम और आंसुओं ने दिया दिल को सहारा
0: सहारा मोहसिन,
1: मुझको।
0: क्या कहने क्या कहने।
1: उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं,
0: आहा
1: उसको पाना तो मुकद्दर की लकीरों में नहीं, उसको खोना भी करें कैसे, गवारा
0: गवारा
1: मुझसे।
0: मोहसिन।
1: हमको मालूम है लौट कर आना तेरा,
0: आहा
1: हमको मालूम है लौट कर आना तेरा नहीं मुमकिन, फिर भी खुदा रा मोहसिन। उसने जब जब भी मुझे दिल से पुकारा मोहसिन, मैंने तब तब ये बताया कि तुम्हारा
0: हमारा मोहसिन।
1: मोहसिन।
0: बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त गज़ल थी। और हमारे साथ थे ज़ीशान अली गोंदल साहब, और कहते हैं कि मैं भी गज़ल सुनाना चाहता हूँ, तो आप रिक्वेस्ट भेजिए ताकि आपको भी हम आप ले लीजिए, एम के ने भी लाइव ले लीजिए, रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है, तो आप इनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे पास 3-4 मिनट से इनसे गज़ल सुनेंगे, फिर ब्रेक पे चलेंगे, और फिर ब्रेक के बाद हमारे पास 25 मिनट का एक और सिलसिला होगा। जी हाँ, अगर आपने रिक्वेस्ट भेजी है तो जो ही हमें ये रिक्वेस्ट मिलेगी तो हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे और आपको भी लाइव ले लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, जो भी हमें लाइव इस वक्त टिकटॉक पे देख रहे हैं, और जो हमें इस वक्त ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से सुन रहे हैं 14:13 AM पर, या आप हमें डेब प्लस पे भी सुनते हैं ब्रेडफोर्ड में BFT एशियन रेडियो के नाम से। और ये नशात आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, रंगे महफिल प्रोग्राम जारी और सारी है आपके लिए। रिक्वेस्ट देखिए एम के, इनकी रिक्वेस्ट अगर मिली है तो इन्हें एक्सेप्ट कर लीजिए ताकि इनसे हम कुछ सुन लें। आपको आवाज आ रही है? हेलो,
1: जी, ये रिक्वेस्ट मेरे पास शो नहीं हो रही है, वो आपको ही देखना पड़ेगा।
0: नहीं, इनकी रिक्वेस्ट यहाँ शो नहीं हो रही है।
1: ओके, इसका मतलब अभी उन्होंने की नहीं
0: जी
1: रिक्वेस्ट,
0: जी आप
1: उनकी
0: दोबारा,
1: प्राइवेट आईडी है।
0: जी, आप दोबारा जीशान अली गोंदल, आप दोबारा रिक्वेस्ट भेजिए ताकि हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकें। आपसे बात करके हमें
1: एक्सेप्ट
0: खुशी
1: इसी
0: होगी।
1: अशांत है वो मैं पढ़
0: जी
1: सकती
0: जी
1: हूँ
0: जी
1: अगर
0: जी
1: आप
0: आप
1: चाहें।
0: हमारे पास 3 मिनट्स हैं, आप पढ़िए, उसके बाद
1: ओके
0: ब्रेक
1: ओके
0: पे चलेंगे। जी जी
1: ओके ओके, एक
0: जी
1: मिनट।
0: जी और सामिन, इस वक्त आप सुन रहे हैं रंगे महफिल पेशकश है आपके अपने ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की 14:13 AM पर। जी
1: जी,
0: जी
1: ये वसी शाकी है, वो मैं
0: जी
1: सुनाती
0: जी क्या कहने वसी की
1: हूँ। अपने एहसास से छूकर मुझे
0: मुझे
1: संदल कर दो,
0: बहुत खूब।
1: अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ,
0: मुकम्मल
1: मुकम्मल
0: कर
1: कर
0: दो,
1: दो।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे,
0: बहुत खूब।
1: ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे
0: मुझे पागल
1: पागल
0: कर
1: कर
0: दो,
1: दो।
0: बहुत खूब,
1: तुम हथेली को मेरे
0: मेरे प्यार
1: प्यार की
0: की मेहंदी
1: मेहंदी
0: से
1: से
0: रंगो।
1: रंगो,
0: आहा
1: तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का
0: काजल
1: काजल
0: कर
1: कर
0: दो,
1: दो,
0: बहुत खूब बहुत
1: क्या
0: खूब।
1: कहने। उसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे,
0: आहा
1: उसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, मेरे चेहरे पे
0: चमकता
1: चमकता
0: हुआ
1: हुआ
0: आंचल
1: आंचल
0: कर
1: कर
0: दो,
1: दो।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसो मुझ पर,
0: आहा
1: धूप ही धूप हूँ मैं टूट कर बरसो मुझ पर, इस कदर बरसो मेरी रूह में
0: जल
1: जल
0: थल
1: थल
0: कर
1: कर
0: दो,
1: दो।
0: बहुत खूब।
1: जैसे सहराओं में हर शाम हवा चलती है,
0: आहा
1: जैसे सहराओं में हर शाम हवा
0: हवा
1: चलती
0: चलती
1: है,
0: है
1: इस तरह मुझ में चलो
0: और
1: और
0: मुझे
1: मुझे जल थल कर दो।
0: थल कर दो, बहुत खूब बहुत खूब।
1: तुम छुपा लो मेरा दिल
0: ओट
1: ओट
0: में
1: में अपने
0: अपने
1: दिल
0: दिल,
1: की,
0: आहा
1: तुम छुपा लो मेरा दिल
0: ओट
1: ओट
0: में
1: में अपने दिल की, और मुझे मेरी निगाहों
0: से
1: से
0: भी
1: भी
0: और जल
1: ओझल
0: कर दो,
1: कर दो।
2: क्या कहने,
0: बहुत खूब
1: मसला हूं तो निगाहें ना चुराओ मुझसे,
2: बहुत खूब।
1: मसला हूं तो निगाहें
0: न
1: ना
0: चुराओ
1: चुराओ
0: मुझसे,
1: मुझसे,
2: बहुत
1: अपनी
2: खूब,
1: चाहत से तवज्जो से
0: मुझे
1: मुझे
0: हल
1: हल
0: कर
1: कर
0: दो,
1: दो।
0: बहुत
2: क्या
0: खूब।
2: कहने,
1: अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे,
0: आहा
1: अपने गम से कहो
0: हर
1: हर
0: वक्त
1: वक्त
0: मेरे
1: मेरे
0: साथ
1: साथ
0: रहे,
1: रहे, एक एहसान करो इसको।
3: Listen to Link FM on the move by downloading the Link FM app.
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2 Day project, bringing together different faiths and cultures. centres to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
2: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
8: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233 or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
9: ਲੋ ਜੀ ਸੁਣੋ ਜੀ ਆਈ ਗਏ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੇ ਤੱਕੋ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਦੀ ਔਰ ਦਿਗਰ ਤਕਰੀਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਪਰ ਬਣਵਾਈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਬੁਝੋ ਖਾਨ ਕੈਟਰਿੰਗ ਰਾਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆਰਡਰ ਨਿੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਬੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਖਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਕੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਪਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ 07931737547
10: ਜਾਂ 07784850934
11: Do you ever find yourself lonely or isolated, or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11am till 2pm. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074-439-54378. That's 074-439-54378.
12: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
13: This is Link FM.
14: जहां हर लफ्ज दिल से निकले
15: और हर सूर दिल को छो जाए
16: वही है लिंक FM.
17: दिल से आपके साथ
18: लिंक FM Sheffield.
19: दिल से दिल को मिलाता हर रंग हर आवाज को सजाता आपका अपना रेडियो स्टेशन दिल से आपके साथ
18: लिंक FM Sheffield.

0: सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
0: मैनिंगम सुपर स्टोर,
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस योर चॉइस। Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
3: Aapki dilon.

0: मसला आ रहा है उनकी, तो
1: अगर आप देखिए आप भी इस पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं।
0: नहीं जी बिल्कुल मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। आप इनको फुल एक्सेस दी ना सर जी,
1: मैं लेकिन यहाँ से कुछ यहाँ से सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आज के लिए गालबन है या तो मैं इसे कंप्लीट ऑफ करूं तो फिर मैं आपको ले सकता हूं, लेकिन फिर वो तसलसल नहीं रहता प्रोग्राम का।
0: वो अगर आप ऑफ करेंगे तो ब्रॉड ही ऑफ हो जाएगी।
1: जी जी जी ऐसे ही हमारा सारा ये नेटवर्क डाउन हो
0: जाएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं। चलिए
1: जी जी, तो जितने भी मैं यूं करता हूं कि जितने भी आज हमारे सुनने वाले व्यूज आए हैं जिन्हें आज हम लाइव नहीं ले पाए, आप सभी से माजरत, कोई टेक्निकल इशू था स्टूडियो में जिसकी वजह से आपकी हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बल्कि हम यहाँ पे कोशिश भी कर रहे थे और चाहते हुए भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हम नहीं कर पाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के इस सिलसिले को उठाए रखते हैं। कहते हैं ना कि साकिया रंज न कर जाग उठेगी महफिल, साकिया रंज न कर जाग उठेगी महफिल, और कुछ देर उठा रखते हैं पीना अपना। तो अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह जो भी सुनने वाले आज लाइव जिन्हें हम नहीं ले पाए उन्हें हम अगली महफिल में अगली शिस्त में खुश आमदेद कहेंगे, और हमारे साथ शायद सना भी होंगी स्टूडियो में मुआवनत के लिए, तो जो आज हमें दिखते हुई हैं वो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नहीं होंगी। वेंसडे को दोबारा सभी से मुलाकात होगी।
0: थैंक यू सो मच, अगर आप इजाजत दें तो जाते जाते
1: जी जी जी जी जरूर सुनाइए
0: जो की और उसके बाद जी जी फिर आपका भी टाइम हो जाए।
1: आप उस एतवार से आप कितनी लकी हैं कि आपकी कॉल मिलने के बाद फिर किसी की बना के मुसव्वर ने तोड़ा कलम।
0: बहुत शुक्रिया, बस ये कुछ हो गया बस आज गुड लक।
1: जी जी आप दोनों सुनाइए, आप दोनों बल्कि हम कलाम हो जाइए ताकि हमारे पास 3 मिनट है। जी जी
0: जी ठीक है, चले मैं उसके बाद फिर हम एक एम को भी सुनती है। जी मेरे पास गजल बड़ी अच्छी के जलने वालों की निगाहों से छुपाया हुआ शख्स, जलने वालों की
1: निगाहों से छुपाया हुआ शख्स,
0: मुझ में रहता है जमाने का
1: सताया हुआ शख्स। बहुत खूब,
0: बहुत शुक्रिया सर। याद आता है तो भर जाता है नुकसान का रंज, याद आता है तो भर जाता है
1: नुकसान का रंज,
0: जिंदगी भर का असासा था गवाया
1: हुआ शख्स। क्या कहने बहुत खूबसूरत है, वाह वाह वाह,
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और दिल ने तावान की सूरत में लुटाया है नसीब।
1: आहा,
2: you are listening to Link FM.
3: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
4: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
5: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback. There's your solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Bellhouse Road, Sheffield or call 0114-308-2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
6: Accident ho gaya, rapa rapa. अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
7: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to

0: खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
1: So what?
0: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
1: Big deal, dude.
0: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
1: Oh man.
2: मैनू नी चाहिदा कोई राजा,
1: चल झूठी
2: ना राजे दी यारी, तेरे मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा।
1: हाय चुकले रब्बा, मैनू
2: मैनू ते चढ़िया चा फैशन दा,

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp. 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba, and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

उम्मीद है कि दोस्तों की पसंद आया उसी। जितने भी दोस्तों का साथ दे रहे सब दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट स्पेशल दोस्त सूफी मुश्ताक साहब, राजा मुश्ताक साहब कलड़ा वाले, चैन जमान साहब और बाकी जितने दोस्त उन्होंने वास्ते सुनो, ये जरूर पसंद है।